0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो मन भावन 90.8 FM, always had touchy.
1: कृषि संदेश.

श्रोताओं, कबीर साहब फिर वही दृश्य दोहराते हैं। कबीर मंदिर ढही पड़ा, भई ईट सेंबार, यह शरीर तो गिरेगा ही, इसकी ईंटें तो मिट्टी होंगी ही, यह तो प्रकृति का अटल नियम है। लेकिन इस बार कबीर एक उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, करी चेजारा सो प्रीतिड़ी, उस चेजारा यानी उस परम कारीगर, उस परमात्मा से प्रीति कर लो, अपनी आत्मा का नाता उस बनाने वाले से जोड़ लो। क्यों? जो ढहे न दूजी बार, ताकि यह जीवन का मंदिर फिर कभी न ढहो। इसका अर्थ है यह है कि जब आप उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो आप जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से मुक्त हो जाते हैं। फिर आपको बार बार मिट्टी का पुतला बनकर गिरना और बिखरना नहीं पड़ता। इसे ऐसे समझिए जैसे एक कच्चा घड़ा पानी में गल जाता है, लेकिन अगर उस घड़े को आग में तपा कर पक्का कर दिया जाए तो वह अपनी पहचान नहीं खोता। परमात्मा का प्रेम वह आग है जो हमारे इस कच्चे मंदिर को अमर कर देती है। कबीर कह रहे हैं कि मकान से मोह करने के बजाय मकान मालिक से दोस्ती कर लो, फिर घर गिरने का डर खत्म हो जाएगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी प्रीति यानी अपने प्रेम का केंद्र देखिए। हम चीज़ों से प्यार करते हैं, हम ईंट पत्थरों से प्यार करते हैं, हम अपनी देह से प्यार करते हैं, और ये सब गिरने वाली चीज़ें हैं, इसलिए हम हमेशा डर में जीते हैं। आज कोशिश कीजिए उस कारीगर से रिश्ता जोड़ने की। वह कारीगर कहीं दूर नहीं, आपके भीतर बैठा इस मंदिर को चला रहा है। जब प्रेम नश्वर से होता है तो दुख मिलता है, जब प्रेम नश्वर से होता है तो दुख मिलता है, और जब प्रेम शाश्वत से होता है तो मुक्ति मिलती है। उस मालिक से लो लगाइए ताकि आपको बार बार इस मिट्टी की ढेर में ना मिलना पड़े। अपनी आत्मा को उस धुन से जोड़िए जो कभी खामोश नहीं होती। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

एपिसोड नंबर 75। नमस्कार दोस्तों, 90.8 एफएम रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, हम अपनी हैसियत कैसे नापते हैं? चमक धमक से, गहनों से, या उन कीमती चीज़ों से जो हमारे पास हैं? हमें लगता है कि अगर हमारा घर महल जैसा है और हम हीरे जवाहरात से लदे हैं तो हम सुरक्षित हैं। हमें अपनी कीमत पर गुमान होने लगता है। लेकिन कबीर साहब एक ऐसे मंदिर का जिक्र कर रहे हैं जो मामूली नहीं है। वह हीरे और माणिकों से जड़ा है। वह देखने में इतना भव्य है कि आंखें चौंधिया जाए, पर कबीर की पारखी नज़र उस चमक के पीछे छिपी एक कड़वी सच्चाई देख लेती हैं। आज का दोहा दिखावे और अस्तित्व के बीच के उस धोखे के परतों को खोलेगा। आइए जानते हैं उस कीमती मंदिर का अंत क्या होने वाला है। कबीर मंदिर लाश का जड़िया हीरे लाली, दिवस चारी का पेखणा बिनसी जाएगा काल ही।

भाई। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, कम्बे कबीर मंदिर लाश का, जड़िया हीरे लाली। कबीर यहाँ दो अर्थ दे रहे हैं। पहला, शरीर जो लाखों की कीमत का है और जिसमें हीरे लाल और जैसे कीमती इंद्रियां और सांसें जड़ी हैं। दूसरा, वह बाहरी वैभव जिसे इंसान अपनी शान समझता है। देखने में यह मंदिर अद्भुत और बहुत मजबूत हैं, पर अगली पंक्ति में वे सारा भ्रम तोड़ देते हैं। दिवसचारी का पेखणा, यह जो तुम देख रहे हो, यह जो पेखणा यानी तमाशा है, यह सिर्फ चार दिन का है। आज है, कल नहीं होगा, बिन सी जाएगा काल ही। कल यानी बहुत जल्द यह सब विनष्ट हो जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आसमान में आतिशबाजी होती है, एक पल के लिए पूरा आसमान रंगों और हीरों जैसा जगमगा उठता है, लेकिन अगले ही पल सिर्फ काला धुआं और राख बचती हैं। कबीर कह रहे हैं कि तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी दौलत और तुम्हारा यह शानदार शरीर उस आतिशबाजी जैसा है। उसकी कीमत होने के भ्रम में, उसके कीमती होने के भ्रम में मत रहना, क्योंकि मौत की एक फूंक इस सारे दिए को बुझा देगी। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी कीमती चीज़ों को देखिए। हम जिन चीज़ों को सहेजने में अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं, क्या वे हमें अमर बना सकती हैं? क्या हीरे जवाहरात उस विदाई के क्षण को एक पल के लिए भी टाल सकते हैं? आज कोशिश कीजिए उस सुंदरता को पहचानने की, जो कभी विनष्ट नहीं, नष्ट नहीं होती। कबीर हमें डरा नहीं रहे, वे हमें बचकानापन छोड़ने को कह रहे हैं। खिलौने जितने भी कीमती हो, होते तो खिलौने ही हैं। अपनी जिंदगी को सिर्फ बाहरी चमक थमक से मत तोलिए, भीतर के उस मंदिर को सवारिए जिसकी ज्योति कभी बुझती नहीं। याद रखिए, जो कल मिट जाने वाला है उस पर गर्व करना नादानी है, जो सदा रहने वाला है उसे खोजना ही दानाई अर्थात बुद्धिमानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

एपिसोड 76। नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, बचपन में हम सबने मिट्टी के घरौंदे बनाए हैं। हम धूल इकट्ठा करते थे, उसे पानी से सींचते थे और एक महल खड़ा कर देते थे। फिर जरा सी हवा आई या फिर किसी का पैर लगता, वह महल वापस धूल बन जाता। तब हमें दुख नहीं होता था क्योंकि हम जानते थे कि वह खेल है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम भूल गए कि हम भी एक बड़े खेल का हिस्सा हैं। कबीर साहब आज हमें उसी बचपन की धूल की याद दिला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिसे तुम अपना शरीर कहते हो, जिसे तुम अपनी पहचान कहते हो, वह असल में क्या है। आज का दोहा परम सत्य की उस धूल की बात करता है जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमें जाना है। आइए जानते हैं उस पुड़िया का सच क्या है। कबीर धूली सकेली करी पूड़ी जे बांधी एह, दिवस चारी का पेखणा अंति खेह का खेह।

यह दोहा मिट्टी की महिमा और अस्तित्व की वास्तविकता का चरम है। इसमें इन्होंने मनुष्य के इस अहंकार को, जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं, महज एक मिट्टी की पुड़िया बताकर जीवन के सारे तामझाम को समेट दिया है। श्रोताओं, कबीर साहब कितनी सादगी से जीवन का दर्शन कह देते हैं। कबीर धूली सकेली करी, वे कहते हैं कि उस परमात्मा ने थोड़ी सी धूल इकट्ठा की और पुड़ी बांधी, एहा उसकी एक पुड़िया बांध दी। यह हमारा शरीर क्या है? पांच तत्वों की मिट्टी से बंधी हुई एक छोटी सी पुड़िया ही तो है। दिवसचारी का पेखना, यह पुड़िया थोड़े दिन इधर उधर डोलती हैं, बातें करती हैं, रिश्ते जोड़ती हैं, और हमें लगता है कि यह तमाशा अर्थात पेखना हमेशा चलता रहेगा। लेकिन कबीर अंतिम सत्य की चोट करते हैं, अंति खेह का खेह। खेह यानी धूल या राख। अंत में यह पुड़िया खुलेगी और इसकी मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाएगी, धूल धूल हो जाएगी। इसे ऐसे समझिए कि जैसे समुद्र की लहर थोड़ी सी रेत को समेट कर एक टीला बना देती हैं और अगली लहर आते ही वह टीला फिर से समतल समुद्र की रेत बन जाता है। हमारी हस्ती भी समय की लहर पर बनी मिट्टी की उस ढेर जैसी ही है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने गुरूर को देखिए। हम किस बात पर अकड़ रहे हैं? इस पुड़िया के रंग पर, इसकी ताकत पर, या इसमें भरी हुई हवा पर? जब हम जान लेते हैं कि हमारा अंत खेह यानी धूल ही है, तो हमारे भीतर से दूसरों के प्रति नफरत और ईर्ष्या खत्म होने लगती हैं। फिर हम किसी को नीचा नहीं दिखाते, क्योंकि हम जानते हैं कि सामने वाला भी उसी मिट्टी की पुड़िया है जिससे हम बने हैं। आज कोशिश कीजिए उस मिट्टी से जुड़ने की। सादगी में रहिए, प्रेम बांटिए, और याद रखिए कि तमाशा खत्म होने पर हम सबको उसी जमीन का हिस्सा बन जाना है जो मिट्टी से जुड़ा रहता है, उसे टूटने का डर नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

एपिसोड एपिसोड 77। नमस्कार दोस्तों, 90.8 एफएम रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सपने में देखा कि आपको बहुत बड़ा खजाना मिल गया है या आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं? सपने में वह सब इतना सच लगता है कि हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, हम डरते हैं या खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है या आँख खुलती हैं, वह सब कहाँ चला जाता है। न वह खजाना हाथ आता है, न वह मुसीबत कहीं बचती है। कबीर साहब आज हम सबकी आँखें खोलने के लिए आए हैं। वे कह रहे हैं कि भाई, तुम जिस दुनिया को दिन भर सच मान कर लड़ रहे हो, बटोर रहे हो और परेशान हो रहे हो, यह भी उस रात के सपने से ज़्यादा कुछ नहीं है। आज का दोहा हमें जागृति की ओर ले जाएगा, जहां हार और जीत के मायने बदल जाते हैं। आइए जानते हैं कबीर की नज़र में यह दुनिया क्या है। कबीर सुपने रैणी के उघड़ी आए नैन, जीव पड़िया बहु लुटी में, जागे लैण न देण।

श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं कबीर सुपिने रैणी के, यह जो हमारा जीवन है यह रात रैणी में देखे गए एक सपने की तरह है। जब हम सो रहे थे तो हमने इसमें बहुत कुछ देखा, अपनापन, परायापन, धन दौलत और रिश्ते उघड़ी आए नैन, पर जैसे ही ज्ञान का सवेरा हुआ और मेरी आंखें खुली तो नज़ारा बदल गया। अगली पंक्ति में वे हमारी आज की हालत बताते हैं। जीव पड़या बहु लुटी में, जब तक आंखें बंद थीं अर्थात हम अज्ञानी थे, तब तक यह जीव लूट खसोट में पड़ा हुआ था। मुझे ये मिल जाए, मैं उसका छीन लूँ, मैं सबसे अमीर बन जाऊँ, मैं सबसे ताकतवर बन जाऊँ, मेरी हर जगह प्रशंसा ही प्रशंसा हो। हम इसी छीना छपटी में जिंदगी बिता रहे थे, अज्ञान में जिंदगी को ढो रहे थे। जागे लैन ना दैन, लेकिन जैसे ही आँख खुली, जैसे ही बोध हुआ, तब समझ आया कि यहाँ न कुछ लेना है और न कुछ देना, सब कुछ यही का यही धरा का धरा रह जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि जैसे फिल्म खत्म होने के बाद सिनेमा हॉल की लाइटें जल जाती हैं, तब हमें पता चलता है कि जिस विलेन से हम डर रहे थे या जिस हीरो की दौलत से हम जल रहे थे, वह तो सिर्फ एक पर्दे पर था। कबीर कह रहे हैं कि जागने के बाद न कोई दुश्मन बचता है, न कोई संपत्ति बचती है और न कोई दुश्मनी बचती है, न कोई डर बचता है, तो सिर्फ देखने वाला साक्षी। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी चिंताओं को देखिए। हम जिस चीज के लिए आज रातों की नींद खराब कर रहे हैं, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी चिंताओं को देखिए। हम जिस चीज के लिए आज रातों की नींद खराब कर रहे हैं, क्या वह 10 साल बाद मायने रखेगी? क्या वह मौत के बाद हमारे साथ आएगी? हम एक ऐसे सपने में जी रहे हैं जहां हमने खुद को कर्ता मान लिया है। आज कोशिश कीजिए थोड़ा जाग कर जीने की। जब आप यह जान लेते हैं कि यह सब एक नाटक है, एक सपना है, तो आपके भीतर तनाव खत्म हो जाता है। फिर आप न जीते जीत में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं फिर आप न जीत में बहुत ज़्यादा उछलते हैं, न हार में बहुत ज़्यादा टूटते हैं। आज अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि जिसे आप लूटना चाहते हैं वह मिट्टी है, और जो आप खोने से डर रहे हैं वह भी मिट्टी है। असल धन तो आपके भीतर की शांति है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

एपिसोड 78। नमस्कार दोस्तों, 90.8 एफएम रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि जब आप गहरी नींद में सपना देखते हैं तो उस सपने में दो लोग होते हैं, एक तो आप जो बिस्तर पर सो रहे हैं और एक वो जो सपने के अंदर भाग रहा है, डर रहा है, हंस रहा है। सपने में आपको सामने वाला व्यक्ति खुद से अलग लगता है, वहाँ दुश्मन अलग हैं, दोस्त अलग हैं और भगवान भी अलग हैं। लेकिन जैसे ही आपकी नींद टूटती है तो दूसरा इंसान कहाँ चला जाता है, वो दुश्मन, वो दोस्त, वो भगवान सब कहाँ विलीन हो जाते हैं। कबीर साहब आज इसी जागने के विज्ञान को समझा रहे हैं। वे बता रहे हैं कि जब तक हम सो रहे हैं तब तक दुनिया दो है, और जिस दिन जाग गए उस दिन सिर्फ एक ही बचता है। आइए जानते हैं कबीर की इस जादुई दुनिया का सच। कबीर सुपने रैणी के पारस जीए में छेक, जो सोऊं तो दोई जना ते जागूं तो एक।

श्रोताओं, कबीर साहब कह रहे हैं कबीर सुपने रैणी के, यह जीवन उस रात के सपने जैसा ही है। पारस जीए में छेक, पारस यहाँ उस परम तत्व या उस अनुभव को कहा गया है जिसमें मन को बांध दिया है या एक ऐसा छेद कर दिया है जिसमें सच्चाई साफ दिखने लगी है। अब कबीर असली मर्म की बात कहते हैं, जो सोऊं तो दोई जना, जब तक मैं अज्ञान की नींद में सो रहा हूं तब तक मुझे सब अलग अलग दिखते हैं। मैं अलग हूं, तुम अलग हो, भक्त अलग हैं, भगवान अलग हैं, यह द्वैत हैं, यही संसार हैं। लेकिन जे जागूं तो एक, जैसे ही बोध हुआ, जैसे ही मैं जागा तो पता चला कि वह दूसरा तो कभी था ही नहीं। जो बाहर दिख रहा था वह भी मैं ही था, वह परमात्मा और मैं दो नहीं बल्कि एक ही चेतना के दो रूप थे। इसे ऐसे समझिए कि जैसे समुद्र की लहर, इसे ऐसे समझिए कि जैसे समंदर की लहर को लगता है कि वह लहर है और समुद्र उससे अलग है, लेकिन जिस पल वह शांत होती हैं उसे पता चलता है कि वह तो हमेशा से पानी ही थी। कबीर कह रहे हैं कि अज्ञान की नींद में हम खुद को परमात्मा से अलग मानकर भटक रहे हैं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने अलगाव को देखिए। हम क्यों दूसरों से नफरत करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वे हमसे अलग हैं। हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि परमात्मा हमसे दूर कहीं बैठा है। आज कोशिश कीजिए इस एक को पहचानने की। अगर आप जाग कर देखेंगे तो आपको हर इंसान में अपना ही अक्स दिखेगा। अब दूसरा कोई बचता ही नहीं तो फिर नफरत किससे और डर किसका? कबीर हमें उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जहां पहुंचकर मैं और तू का फर्क मिट जाता है। आज अपनी आत्मा के आईने को साफ कीजिए और देखिए कि जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं वह आपके भीतर ही आपकी सांस बनकर चल रहा है। जाग जाइए, क्योंकि जागने में ही आनंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम। एपिसोड 79। नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कई बार हमें अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सांप जैसी दिखाई देती है। हम डर जाते हैं, भागते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई हाथ में टॉर्च लेकर आता है और रोशनी उस रस्सी पर पड़ती है, हमारा डर गायब हो जाता है। हम हंसने लगते हैं कि अरे, यहाँ तो सिर्फ एक रस्सी थी। कबीर साहब आज हमारे मन के इसी अंधेरे की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह दुनिया भी वैसी ही है, जो है नहीं वो दिख रहा है और जो है उसे हम देख नहीं पा रहे हैं। आज का दोहा हमें सिखाएगा कि कैसे अपनी नज़र को साफ करके हम इस भ्रम के बाहर निकल सकते हैं। आइए सुनते हैं कबीर की यह वाणी। कबीर देखत देखत जग गया, देखी न सक्या कोई। कबीर देखे ता देखिए, जो कबीर सा होई। कबीर देखत देखत

श्रोताओं, कबीर कहते हैं, कबीर देखत जग गया, पूरी दुनिया अपनी इन आँखों से इस संसार को देख रही हैं, लेकिन देख ही न सका कोई। कबीर कहते हैं कि असलियत की कोई नहीं देख पाया, सबने सिर्फ ऊपरी रंग रूप देखा, किसी ने उस भीतर छिपे सत्य को नहीं पहचाना जो इन सब चीज़ों के पीछे हैं। अगली पंक्ति में बड़ी गहरी बात कहते हैं, कबीर देखें ता देखिया, कबीर जो देख पा रहे हैं यानी वह जो परम सत्य, वह तभी दिखाई दे सकता है जो कबीर सा होई, यानी जब तक आप में कबीर जैसी सादगी, कबीर जैसा वैराग्य और कबीर जैसी निष्पक्षता नहीं आएगी, तब तक आप सत्य को नहीं देख पाएंगे। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक गंदा चश्मा, धूल भरा चश्मा पहनकर हम साफ दुनिया नहीं देख सकते। कबीर कह रहे हैं कि अगर उस मालिक को देखना है तो पहले अपनी आँखों से अहंकार और पक्षपात का चश्मा उतारना होगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी सोच पर गौर कीजिए। हम क्या देख रहे हैं? हम दूसरों में बुराइयां देख रहे हैं, हम दुनिया में कमियां देख रहे हैं, हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो हमारी आंखों के सामने पेश किया जा रहा है। आज कोशिश कीजिए भीतर झांकने की। कबीर होने का मतलब है भीतर से साफ होना। जब आप खुद को साफ कर लेते हैं तो पूरी दुनिया आपको परमात्मा का रूप दिखने लगती है। आज अपनी नज़र बदलिए ताकि नज़ारा बदल सकें। याद रखिए, जो सच है उसे आँखों से नहीं आत्मा से देखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधु 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम। एपिसोड 80। नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं। हमारे दोस्तों की लिस्ट बहुत लंबी है। सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं और बाजारों में इंसान का हुजूम उमड़ा रहता है। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। लेकिन क्या कभी आपने गहराई से सोचा है कि इस भारी भीड़ में ऐसे कितने लोग हैं जो वाकई समझदार हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के सही और गलत का अंतर समझते हैं? कबीर साहब आज इसी भीड़ का असली चेहरा हमारे सामने ला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इंसानों के जिस्म बटोर लेने से या सिर गिनने से या उनको केवल देख लेने से समाज समझदार नहीं हो जाता। आज का दोहा हमें भीड़ और विवेक के बीच का फर्क समझाएगा। आइए सुनते हैं कबीर साहब की खरी खरी वाणी। कबीर, इस संसार में घने मनीष मतिहीन, हेरत हेरत हेरी गया, कबीर भई मतिलीन।

0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार में घने मनीष मतिहीन, इस दुनिया में ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत घनी है, यानी बहुत ज़्यादा है जो मतिहीन है। मतिहीन का मतलब यहाँ सिर्फ अनपढ़ होना नहीं, बल्कि उसका अर्थ है विवेक से खाली होना, समझदारी और करुणा से दूर होना। ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे भागते हैं। अगली पंक्ति में कबीर अपनी खोज का नतीजा बताते हैं। हेरत हेरत हेरी गया, मैं पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को हेरता रहा, यानी ढूंढता रहा जो वाकई मतिमान हो, गतिमान हो, बुद्धिमान हो, जिसके पास आत्मज्ञान हो। ढूंढते ढूंढते मेरी उम्र गुजर गई और अंत में क्या हुआ। कबीर भई मतिलीन, कबीर कहते हैं कि दूसरों को ढूंढते ढूंढते मेरा अपना मन और मेरी अपनी बुद्धि उस परमात्मा के ध्यान में लीन हो गई। मुझे बाहर तो कोई बिरला ही मिला, पर भीतर जाने पर वह सच्चा ज्ञान मिला। इसे ऐसे समझिए कि जैसे हंस मोतियों की तलाश में पूरे तालाब को छान मारता है, पर वहाँ उसे सिर्फ कंकड़ पत्थर ही मिलते हैं, क्योंकि मोती हर तालाब में नहीं मिलते, उसके लिए आपको मानसरोवर में ही जाना पड़ेगा। कबीर कह रहे हैं कि दुनिया की भीड़ में समझदार इंसानों को ढूंढना वैसा ही है जैसे कि मोतियों को ढूंढना। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा इस बात पर विचार कीजिए कि हम किस भीड़ का हिस्सा हैं। क्या हम भी बिना सोचे समझे वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं? जब हम बिना विवेक के जीते हैं तो हम सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाते हैं। आज कोशिश कीजिए भीड़ से अलग होकर अपनी मति, अपनी बुद्धि को जगाने की। कबीर होने का मतलब यह भी है कि आप दुनिया की देखा देखी गलत रास्ते पर ना चलें। अपनी समझ को साफ रखिए, नेक काम कीजिए, और अगर बाहर कोई समझदार ना मिले तो खुद के भीतर झांक कर देखिए। वहाँ जो समझ पैदा होगी वह आपको कभी भटकने नहीं देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टच।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। लहलाती पीली सरसों की दमक, गिद्दा की ताल और प्रेम के प्रतीक सोनी महिवाल का राज्य पंजाब, ऊंचे पूरे कद काठी के मेहनतकश नौजवान, सिर पर साफा और कुड़ियों की धानी चुनर, साथ ही सरसों का साग और मक्की की रोटी का लाजवाब स्वाद, कुछ ऐसा ही दृश्य उभरता है मस्तिष्क में जब भी बात आती है पंजाब की। देश की स्वतंत्रता में भी पंजाब की अपनी अहम भूमिका थी। कई ऐसे वीर क्रांतिकारी हुए जो पंजाबी तो थे ही, साथ ही निडर और साहसी भी थे, जिनका वचन उनकी आन बान और शान था। हरिकिशन तलवार के पिता गुरुदास माल तलवार थे। दोनों ही पिता पुत्र की शहादत स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शायद एकमात्र उदाहरणों में से एक है। हरिकिशन का जन्म सीमांत प्रांत के मर्दान जिले के गल्लाढर स्थान पर हुआ था। पिता गुरुदास मल महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी के प्रशंसक और पाठक थे। जब भारत की आजादी का बिगुल बजा तो गुरुदास मल ने अपने बेटों को आंदोलनकारी बनाने का संकल्प तो ले लिया, साथ ही स्वयं प्रशिक्षित भी किया। सन 1930 में हरिकिशन और छोटे भाई भगत राम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भारत से बाहर जाने में पूर्ण रूप से सहायता की थी, जिसकी सजा के तौर में दोनों भाइयों को पेशावर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था। राजनैतिक गतिविधियों और आंदोलनकारियों से जेल ठसाठस भरी थी। अंग्रेज इस मुसीबत से निजात पाना चाहते थे, जिसके लिए उपाय ये निकाला कि अंग्रेजी भाषा में लिखे एक फॉर्म में ये कहकर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे कि ये तुम्हारी रिहाई के ऑर्डर हैं, जबकि असलियत थी कि वो एक प्रतिज्ञा पत्र था, जिसमें हस्ताक्षर करने का मतलब ये है कि वो भविष्य में कभी भी किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होगा, अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी अपराध नहीं करेगा। अंग्रेजी भाषा में लिखे जाने के कारण बात उस समय तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब हरिकिशन घर पहुंचे तो पिता ने बहुत गुस्से में कहा कि उस फॉर्म पर हस्ताक्षर करके परिवार की मर्यादा को भंग कर दिया है। बस फिर क्या था, हरिकिशन तुरंत ही कृत संकल्पित हो गए। उन्होंने ठान लिया कि ब्रिटिश सरकार से वो अवश्य ही बदला लेकर रहेंगे, चाहे उन्हें जो भी करना पड़े।

बचपन से पिता ने हरिकिशन के मन में देशभक्ति कूट कूट कर भर दी थी, इसलिए बालक होते हुए भी वो क्रांतिकारियों के बहुत बड़े प्रशंसक बन गए थे। जब काकोरी कांड का मुकदमा चला तो अखबारों में छपे क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के बयानों को वो बड़े ध्यान से कई कई बार पढ़ा करते थे। मन ही मन सरदार भगत सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था उन्होंने और चल पड़े थे शहादत की राह पर। हरिकिशन के मन में ये बात घर कर गई थी कि अहिंसात्मक आंदोलन से देश को स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, तो उन्होंने क्रांति और विद्रोह का रास्ता चुन लिया। ब्रिटिश सरकार को सबक सिखाने के मकसद से योजना बनाई गई कि पंजाब के गवर्नर से ही हिसाब चुकता किया जाएगा और इसके लिए एक तेज शूटर की जरूरत थी। दैनिक प्रताप अखबार के क्रांतिकारी संपादक चमनलाल कपूर जी हरिकिशन के संकल्प से वाकिफ थे। हरिकिशन की तो दिल की मुराद पूरी हो गई। स्वयं उनके पिता गुरदास माल ने अपने पुत्र को खुश होकर नजदीक से निशानेबाजी का विधिवत प्रशिक्षण दिला दिया था। योजना के अनुसार पंजाब विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 23 दिसंबर सन 1930 को संपन्न होना था। समारोह की अध्यक्षता के लिए पंजाब के गवर्नर जेओफ्रे मॉन्टमोरेसी करने वाले थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उद्बोधन था। योजना के अनुसार 20 दिसंबर सन 1930 को चमनलाल कपूर जी हरिकिशन के साथ लाहौर पहुंच गए। खास बात ये थी कि इस बात का ध्यान रखना था कि फायर के बाद भागना नहीं है ताकि निर्दोष लोगों को नुकसान ना हो। 23 दिसंबर सन 1930 को हरिकिशन जी सूट बूट पहनकर एक पुस्तक को बीच में से काटकर उन्होंने रिवॉल्वर को उसमें छुपा दिया और पहले ही वो सीनेट हॉल में पहुंच गए अपनी क्रांतिकारी योजना को अंजाम देने के लिए।

जैसे ही दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ और विद्वान सभा भवन से जाने लगे, एक कुर्सी पर खड़े होकर गवर्नर पर हरिकिशन ने फायर कर दिया। निशाना चूक गया। गोली गवर्नर की बांह छीलती निकल गई। दूसरी गोली पीठ को छूकर निकल गई, लेकिन तीसरी गोली चलती इससे पहले ही डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नर के सामने आ गए। हरिकिशन को गिरफ्तार कर लिया गया और सलाखों में कैद कर दिया गया। जेल में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। कड़ाके की सर्दी की रातों में भी उनको निर्वस्त्र करके बर्फ की शिलाओं के बीच दबाकर रखते थे। उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। इतनी नरकीय यातनाओं सहने के बाद भी हरिकिशन जैसे वीर क्रांतिकारी ने अपने नाम और पते के अलावा कुछ नहीं बताया। ब्रिटिश सरकार के इतने जुल्मों को उन्होंने धैर्यपूर्वक सहन किया और वो सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद के जय घोष करते रहे। सरकार हैरान थी कि ना जाने हरिकिशन किस मिट्टी का बना है, इतने वार अकेले सहन कर रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। वो टूटते भी कैसे? भारत माता के वीर सपूतों को अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता तो हर कीमत पर प्राप्त जो करनी थी। नामी वकील मोहम्मद आसिफ अली ने हरिकिशन जी को बचाने की बहुत कोशिश की, पैरवी की, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। हरिकिशन ने अपना बयान उर्दू में लिखकर दिया था कि ब्रिटिश शासन अत्याचारी है, उनकी सशस्त्र सेना ने निहत्ते पठानों पर 30 अप्रैल सन 1930 को गोली चलाकर अनेक पुरुषों, महिलाओं और मासूम बच्चों को मार डाला था। मैं जानता हूं कि मेरा भविष्य क्या है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मेरे बलिदान से यदि स्वतंत्रता थोड़ी और नजदीक आए तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं हजार बार बलिदान होने के लिए तैयार हूँ। चाहता हूँ कि मैं बार बार भारत में ही जन्म लूँ और हर बार अपने देश के लिए बलिदान हो जाऊँ। मेरे मरने के बाद भी हजारों हरिकिशन पैदा होंगे। मैं चाहता हूँ कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर अपने अत्याचार बंद करे, हमारा देश छोड़ दे। उन्होंने अपना बयान इनकलाब जिंदाबाद के साथ ही समाप्त कर दिया। जिस जेल में हरिकिशन थे उसी जेल में सरदार भगत सिंह जी को भी रखा गया था। अपने क्रांतिकारी गुरु भगत सिंह से मिलने से मना करने पर हरिकिशन ने अनशन कर दिया। बाद में 9 दिनों के बाद भगत सिंह जी के हाथों दूध पिलाकर ही हरिकिशन ने अपना अनशन समाप्त किया। 9 जून सन 1931 को लाहौर की मियांवाली जेल से सुबह 6 बजे हरिकिशन जी ने फांसी के फंदे को इनकलाब जिंदाबाद कहते कहते हंसते हंसते चूम लिया। हरिकिशन के पिता को भी हिरासत में लेकर कई यातनाएं दी गईं और 25 दिन बाद यानी 4 जुलाई सन 1931 को उनको भी फांसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारी पिता पुत्र की ऐसी गौरवशाली साहसिक शहादत को हम शत शत नमन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री पंकज राग ने, समन्वय किया संजय यादव ने और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। जय हिंद।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। लहलाती पीली सरसों की दमक, गिद्दा की ताल और प्रेम के प्रतीक सोनी महिवाल का राज्य पंजाब, ऊंचे पूरे कद काठी के मेहनतकश नौजवान, सिर पर साफा और कुड़ियों की धानी चुनर, साथ ही सरसों का साग और मक्की की रोटी का लाजवाब स्वाद, कुछ ऐसा ही दृश्य उभरता है मस्तिष्क में जब भी बात आती है पंजाब की। देश की स्वतंत्रता में भी पंजाब की अपनी अहम भूमिका थी। कई ऐसे वीर क्रांतिकारी हुए जो पंजाबी तो थे ही, साथ ही निडर और साहसी भी थे, जिनका वचन उनकी आन बान और शान था। हरिकिशन तलवार के पिता गुरुदास माल तलवार थे। दोनों ही पिता पुत्र की शहादत स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शायद एकमात्र उदाहरणों में से एक है। हरिकिशन का जन्म सीमांत प्रांत के मरदान जिले के गल्लाढर स्थान पर हुआ था। पिता गुरुदास मल महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी के प्रशंसक और पाठक थे। जब भारत की आजादी का बिगुल बजा तो गुरुदास मल ने अपने बेटों को आंदोलनकारी बनाने का संकल्प तो ले लिया, साथ ही स्वयं प्रशिक्षित भी किया। सन 1930 में हरिकिशन और छोटे भाई भगत राम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भारत से बाहर जाने में पूर्ण रूप से सहायता की थी, जिसकी सजा के तौर में दोनों भाइयों को पेशावर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था। राजनैतिक गतिविधियों और आंदोलनकारियों से जेल ठसाठस भरी थी। अंग्रेज इस मुसीबत से निजात पाना चाहते थे, जिसके लिए उपाय ये निकाला कि अंग्रेजी भाषा में लिखे एक फॉर्म में ये कहकर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे कि ये तुम्हारी रिहाई के ऑर्डर हैं, जबकि असलियत थी कि वो एक प्रतिज्ञा पत्र था, जिसमें हस्ताक्षर करने का मतलब ये है कि वो भविष्य में कभी भी किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होगा, अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी अपराध नहीं करेगा। अंग्रेजी भाषा में लिखे जाने के कारण बात उस समय तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब हरिकिशन घर पहुंचे तो पिता ने बहुत गुस्से में कहा कि उस फॉर्म पर हस्ताक्षर करके परिवार की मर्यादा को भंग कर दिया है। बस फिर क्या था, हरिकिशन तुरंत ही कृत संकल्पित हो गए। उन्होंने ठान लिया कि ब्रिटिश सरकार से वो अवश्य ही बदला लेकर रहेंगे, चाहे उन्हें जो भी करना पड़े।

बचपन से पिता ने हरिकिशन के मन में देशभक्ति कूट कूट कर भर दी थी, इसलिए बालक होते हुए भी वो क्रांतिकारियों के बहुत बड़े प्रशंसक बन गए थे। जब काकोरी कांड का मुकदमा चला तो अखबारों में छपे क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के बयानों को वो बड़े ध्यान से कई कई बार पढ़ा करते थे। मन ही मन सरदार भगत सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था उन्होंने और चल पड़े थे शहादत की राह पर। हरिकिशन के मन में ये बात घर कर गई थी कि अहिंसात्मक आंदोलन से देश को स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, तो उन्होंने क्रांति और विद्रोह का रास्ता चुन लिया। ब्रिटिश सरकार को सबक सिखाने के मकसद से योजना बनाई गई कि पंजाब के गवर्नर से ही हिसाब चुकता किया जाएगा और इसके लिए एक तेज शूटर की जरूरत थी। दैनिक प्रताप अखबार के क्रांतिकारी संपादक चमनलाल कपूर जी हरिकिशन के संकल्प से वाकिफ थे। हरिकिशन की तो दिल की मुराद पूरी हो गई। स्वयं उनके पिता गुरदास माल ने अपने पुत्र को खुश होकर नजदीक से निशानेबाजी का विधिवत प्रशिक्षण दिला दिया था। योजना के अनुसार पंजाब विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 23 दिसंबर सन 1930 को संपन्न होना था। समारोह की अध्यक्षता के लिए पंजाब के गवर्नर जेओफ्रे मॉन्टमोरेसी करने वाले थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उद्बोधन था। योजना के अनुसार 20 दिसंबर सन 1930 को चमनलाल कपूर जी हरिकिशन के साथ लाहौर पहुंच गए। खास बात ये थी कि इस बात का ध्यान रखना था कि फायर के बाद भागना नहीं है ताकि निर्दोष लोगों को नुकसान ना हो। 23 दिसंबर सन 1930 को हरिकिशन जी सूट बूट पहनकर एक पुस्तक को बीच में से काटकर उन्होंने रिवॉल्वर को उसमें छुपा दिया और पहले ही वो सीनेट हॉल में पहुंच गए अपनी क्रांतिकारी योजना को अंजाम देने के लिए।

को छूकर निकल गई, लेकिन तीसरी गोली चलती इससे पहले ही डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नर के सामने आ गए। हरिकिशन को गिरफ्तार कर लिया गया और सलाखों में कैद कर दिया गया। जेल में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। कड़ाके की सर्दी की रातों में भी उनको निर्वस्त्र करके बर्फ की शिलाओं के बीच दबाकर रखते थे। उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। इतनी नरकीय यातनाओं सहने के बाद भी हरिकिशन जैसे वीर क्रांतिकारी ने अपने नाम और पते के अलावा कुछ नहीं बताया। ब्रिटिश सरकार के इतने जुल्मों को उन्होंने धैर्यपूर्वक सहन किया और वो सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद की जय घोष करते रहे। सरकार हैरान थी कि ना जाने हरिकिशन किस मिट्टी का बना है, इतने वार अकेले सहन कर रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। वो टूटते भी कैसे? भारत माता के वीर सपूतों को अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता तो हर कीमत पर प्राप्त जो करनी थी। नामी वकील मोहम्मद आसिफ अली ने हरिकिशन जी को बचाने की बहुत कोशिश की, पैरवी की, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। हरिकिशन ने अपना बयान उर्दू में लिखकर दिया था कि ब्रिटिश शासन अत्याचारी है, उनकी सशस्त्र सेना ने निहत्ते पठानों पर 30 अप्रैल सन 1930 को गोली चलाकर अनेक पुरुषों, महिलाओं और मासूम बच्चों को मार डाला था। मैं जानता हूं कि मेरा भविष्य क्या है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मेरे बलिदान से यदि स्वतंत्रता थोड़ी और नजदीक आए तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं हजार बार बलिदान होने के लिए तैयार हूँ। चाहता हूँ कि मैं बार बार भारत में ही जन्म लूँ और हर बार अपने देश के लिए बलिदान हो जाऊँ। मेरे मरने के बाद भी हजारों हरिकिशन पैदा होंगे। मैं चाहता हूँ कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर अपने अत्याचार बंद करे, हमारा देश छोड़ दे। उन्होंने अपना बयान इनकलाब जिंदाबाद के साथ ही समाप्त कर दिया। जिस जेल में हरिकिशन थे उसी जेल में सरदार भगत सिंह जी को भी रखा गया था। अपने क्रांतिकारी गुरु भगत सिंह से मिलने से मना करने पर हरिकिशन ने अनशन कर दिया। बाद में 9 दिनों के बाद भगत सिंह जी के हाथों दूध पिलाकर ही हरिकिशन ने अपना अनशन समाप्त किया। 9 जून सन 1931 को लाहौर की मियांवाली जेल से सुबह 6 बजे हरिकिशन जी ने फांसी के फंदे को इनकलाब जिंदाबाद कहते कहते हंसते हंसते चूम लिया। हरिकिशन के पिता को भी हिरासत में लेकर कई यातनाएं दी गईं और 25 दिन बाद यानी 4 जुलाई सन 1931 को उनको भी फांसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारी पिता पुत्र की ऐसी गौरवशाली साहसिक शहादत को हम शत शत नमन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री पंकज राग ने, समन्वय किया संजय यादव ने और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। जय हिंद।

एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM ऑलवेज

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कल हमने बात की थी उस गिरती हुई इमारत की और उस खोए हुए कारीगर की। हमें दुख था कि यह शरीर रूपी मंदिर मिट्टी में मिल जाएगा और इसे बनाने वाला दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन कबीर साहब को दुख में छोड़ देना उसकी फकीरी नहीं है, उनकी आदत नहीं है। वे तो हर समस्या का हल लेकर आते हैं। आज कबीर साहब हमें बता रहे हैं कि अगर दुख चाहते हो कि यह मंदिर बार बार ना गिरे, आज कबीर साहब हमें बता रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि यह मंदिर बार बार ना गिरे, अगर तुम इस जन्म और मरण के मलबे से थक चुके हो तो तुम्हें उस कारीगर को ढूंढना ही होगा। आज का दोहा परम प्रेम और मोक्ष का सूत्र है। आइए जानते हैं उस राज मिस्त्री से दिल लगाने का क्या फल मिलता है। कबीर मंदिर ढही पड़या ईंट भई सेंबार, करी चेजारा सो प्रीतिड़ी जो ढहे न दूजी बार।

श्रोताओं, कबीर साहब फिर वही दृश्य दोहराते हैं। कबीर मंदिर ढही पड़ा, भई ईट सेंबार, यह शरीर तो गिरेगा ही, इसकी ईंटें तो मिट्टी होंगी ही, यह तो प्रकृति का अटल नियम है। लेकिन इस बार कबीर एक उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, करी चेजारा सो प्रीतिड़ी, उस चेजारा यानी उस परम कारीगर, उस परमात्मा से प्रीति कर लो, अपनी आत्मा का नाता उस बनाने वाले से जोड़ लो। क्यों? जो ढहे न दूजी बार, ताकि यह जीवन का मंदिर फिर कभी न ढहो। इसका अर्थ है यह है कि जब आप उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो आप जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से मुक्त हो जाते हैं। फिर आपको बार बार मिट्टी का पुतला बनकर गिरना और बिखरना नहीं पड़ता। इसे ऐसे समझिए जैसे एक कच्चा घड़ा पानी में गल जाता है, लेकिन अगर उस घड़े को आग में तपा कर पक्का कर दिया जाए तो वह अपनी पहचान नहीं खोता। परमात्मा का प्रेम वह आग है जो हमारे इस कच्चे मंदिर को अमर कर देती है। कबीर कह रहे हैं कि मकान से मोह करने के बजाय मकान मालिक से दोस्ती कर लो, फिर घर गिरने का डर खत्म हो जाएगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी प्रीति यानी अपने प्रेम का केंद्र देखिए। हम चीज़ों से प्यार करते हैं, हम ईंट पत्थरों से प्यार करते हैं, हम अपनी देह से प्यार करते हैं, और ये सब गिरने वाली चीज़ें हैं, इसलिए हम हमेशा डर में जीते हैं। आज कोशिश कीजिए उस कारीगर से रिश्ता जोड़ने की। वह कारीगर कहीं दूर नहीं, आपके भीतर बैठा इस मंदिर को चला रहा है। जब प्रेम नश्वर से होता है तो दुख मिलता है, जब प्रेम नश्वर से होता है तो दुख मिलता है, और जब प्रेम शाश्वत से होता है तो मुक्ति मिलती है। उस मालिक से लो लगाइए ताकि आपको बार बार इस मिट्टी की ढेर में ना मिलना पड़े। अपनी आत्मा को उस धुन से जोड़िए जो कभी खामोश नहीं होती। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

एपिसोड नंबर 75। नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, हम अपनी हैसियत कैसे नापते हैं? चमक धमक से, गहनों से, या उन कीमती चीज़ों से जो हमारे पास हैं? हमें लगता है कि अगर हमारा घर महल जैसा है और हम हीरे जवाहरात से लदे हैं तो हम सुरक्षित हैं। हमें अपनी कीमत पर गुमान होने लगता है। लेकिन कबीर साहब एक ऐसे मंदिर का जिक्र कर रहे हैं जो मामूली नहीं है। वह हीरे और माणिकों से जड़ा है। वह देखने में इतना भव्य है कि आंखें चौंधिया जाए, पर कबीर की पारखी नज़र उस चमक के पीछे छिपी एक कड़वी सच्चाई देख लेती हैं। आज का दोहा दिखावे और अस्तित्व के बीच के उस धोखे के परतों को खोलेगा। आइए जानते हैं उस कीमती मंदिर का अंत क्या होने वाला है। कबीर मंदिर लाश का जड़िया हीरे लाली, दिवस चारी का पेखणा बिनसी जाएगा काली। कबीर मंदिर लाश का जड़िया हीरे लाली, कबीर मंदिर लाश का

श्रोता हूं, कबीर साहब कहते हैं, कंबे कबीर मंदिर लाश का, जड़िया हीरे लाली। कबीर यहां दो अर्थ दे रहे हैं। पहला, शरीर जो लाखों की कीमत का है और जिसमें हीरे लाल और जैसे कीमती इंद्रियां और सांसें जड़ी हैं। दूसरा, वह बाहरी वैभव जिसे इंसान अपनी शान समझता है। देखने में यह मंदिर अद्भुत और बहुत मजबूत हैं, पर अगली पंक्ति में वे सारा भ्रम तोड़ देते हैं। दिवसचारी का पेखणा, यह जो तुम देख रहे हो, यह जो पेखणा यानी तमाशा है, यह सिर्फ चार दिन का है। आज है, कल नहीं होगा, बिन सी जाएगा काल ही। कल यानी बहुत जल्द यह सब विनष्ट हो जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आसमान में आतिशबाजी होती है, एक पल के लिए पूरा आसमान रंगों और हीरों जैसा जगमगा उठता है, लेकिन अगले ही पल सिर्फ काला धुआं और राख बचती हैं। कबीर कह रहे हैं कि तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी दौलत और तुम्हारा यह शानदार शरीर उस आतिशबाजी जैसा है। उसकी कीमत होने के भ्रम में, उसके कीमती होने के भ्रम में मत रहना, क्योंकि मौत की एक फूंक इस सारे दिए को बुझा देगी। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी कीमती चीज़ों को देखिए। हम जिन चीज़ों को सहेजने में अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं, क्या वे हमें अमर बना सकती हैं? क्या हीरे जवाहरात उस विदाई के क्षण को एक पल के लिए भी टाल सकते हैं? आज कोशिश कीजिए उस सुंदरता को पहचानने की, जो कभी विनष्टी नहीं, नष्ट नहीं होती। कबीर हमें डरा नहीं रहे, वे हमें बचकानापन छोड़ने को कह रहे हैं। खिलौने जितने भी कीमती हो, होते तो खिलौने ही हैं। अपनी जिंदगी को सिर्फ बाहरी चमक थमक से मत तोलिए, भीतर के उस मंदिर को सवारिए जिसकी ज्योति कभी बुझती नहीं। याद रखिए, जो कल मिट जाने वाला है उस पर गर्व करना नादानी है, जो सदा रहने वाला है उसे खोजना ही दानाई अर्थात बुद्धिमानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

एपिसोड 76। नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, बचपन में हम सबने मिट्टी के घरौंदे बनाए हैं। हम धूल इकट्ठा करते थे, उसे पानी से सींचते थे और एक महल खड़ा कर देते थे। फिर जरा सी हवा आई या फिर किसी का पैर लगता, वह महल वापस धूल बन जाता। तब हमें दुख नहीं होता था क्योंकि हम जानते थे कि वह खेल है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम भूल गए कि हम भी एक बड़े खेल का हिस्सा हैं। कबीर साहब आज हमें उसी बचपन की धूल की याद दिला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिसे तुम अपना शरीर कहते हो, जिसे तुम अपनी पहचान कहते हो, वह असल में क्या है। आज का दोहा परम सत्य की उस धूल की बात करता है जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमें जाना है। आइए जानते हैं उस पुड़िया का सच क्या है। कबीर धूली सकेली करी पूड़ी जे बांधी एह, दिवस चारी का पेखणा अंति खेह का खेह।

यह दोहा मिट्टी की महिमा और अस्तित्व की वास्तविकता का चरम है। इसमें इन्होंने मनुष्य के इस अहंकार को, जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं, महज एक मिट्टी की पुड़िया बताकर जीवन के सारे तामझाम को समेट दिया है। श्रोताओं, कबीर साहब कितनी सादगी से जीवन का दर्शन कह देते हैं। कबीर धूली सकेली करी, वे कहते हैं कि उस परमात्मा ने थोड़ी सी धूल इकट्ठा की और पुड़ी बांधी, एहा उसकी एक पुड़िया बांध दी। यह हमारा शरीर क्या है? पांच तत्वों की मिट्टी से बंधी हुई एक छोटी सी पुड़िया ही तो है। दिवसचारी का पेखना, यह पुड़िया थोड़े दिन इधर उधर डोलती हैं, बातें करती हैं, रिश्ते जोड़ती हैं, और हमें लगता है कि यह तमाशा अर्थात पेखना हमेशा चलता रहेगा। लेकिन कबीर अंतिम सत्य की चोट करते हैं, अंति खेह का खेह। खेह यानी धूल या राख। अंत में यह पुड़िया खुलेगी और इसकी मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाएगी, धूल धूल हो जाएगी। इसे ऐसे समझिए कि जैसे समुद्र की लहर थोड़ी सी रेत को समेट कर एक टीला बना देती हैं, और अगली लहर आते ही वह टीला फिर से समतल समुद्र की रेत बन जाता है। हमारी हस्ती भी समय की लहर पर बनी मिट्टी की उस ढेर जैसी ही है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने गुरूर को देखिए। हम किस बात पर अकड़ रहे हैं? इस पुड़िया के रंग पर, इसकी ताकत पर, या इसमें भरी हुई हवा पर? जब हम जान लेते हैं कि हमारा अंत खेह यानी धूल ही है, तो हमारे भीतर से दूसरों के प्रति नफरत और ईर्ष्या खत्म होने लगती हैं। फिर हम किसी को नीचा नहीं दिखाते, क्योंकि हम जानते हैं कि सामने वाला भी उसी मिट्टी की पुड़िया है जिससे हम बने हैं। आज कोशिश कीजिए उस मिट्टी से जुड़ने की। सादगी में रहिए, प्रेम बांटिए, और याद रखिए कि तमाशा खत्म होने पर हम सबको उसी जमीन का हिस्सा बन जाना है जो मिट्टी से जुड़ा रहता है, उसे टूटने का डर नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

एपिसोड एपिसोड 77। नमस्कार दोस्तों, 90.8 एफएम रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सपने में देखा कि आपको बहुत बड़ा खजाना मिल गया है या आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं? सपने में वह सब इतना सच लगता है कि हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, हम डरते हैं या खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है या आँख खुलती हैं, वह सब कहाँ चला जाता है। न वह खजाना हाथ आता है, न वह मुसीबत कहीं बचती है। कबीर साहब आज हम सबकी आँखें खोलने के लिए आए हैं। वे कह रहे हैं कि भाई, तुम जिस दुनिया को दिन भर सच मान कर लड़ रहे हो, बटोर रहे हो और परेशान हो रहे हो, यह भी उस रात के सपने से ज़्यादा कुछ नहीं है। आज का दोहा हमें जागृति की ओर ले जाएगा, जहां हार और जीत के मायने बदल जाते हैं। आइए जानते हैं कबीर की नज़र में यह दुनिया क्या है। कबीर सुपने रैणी के उघड़ी आए नैन, जीव पड़िया बहु लुटी में, जागे लैण न देण।

श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं कबीर सुपिने रैणी के, यह जो हमारा जीवन है यह रात रैणी में देखे गए एक सपने की तरह है। जब हम सो रहे थे तो हमने इसमें बहुत कुछ देखा, अपनापन, परायापन, धन दौलत और रिश्ते उघड़ी आए नैन, पर जैसे ही ज्ञान का सवेरा हुआ और मेरी आंखें खुली तो नज़ारा बदल गया। अगली पंक्ति में वे हमारी आज की हालत बताते हैं। जीव पड़या बहु लुटी में, जब तक आंखें बंद थीं अर्थात हम अज्ञानी थे, तब तक यह जीव लूट खसोट में पड़ा हुआ था। मुझे ये मिल जाए, मैं उसका छीन लूँ, मैं सबसे अमीर बन जाऊँ, मैं सबसे ताकतवर बन जाऊँ, मेरी हर जगह प्रशंसा ही प्रशंसा हो। हम इसी छीना छपटी में जिंदगी बिता रहे थे, अज्ञान में जिंदगी को ढो रहे थे। जागे लैन ना दैन, लेकिन जैसे ही आँख खुली, जैसे ही बोध हुआ, तब समझ आया कि यहाँ न कुछ लेना है और न कुछ देना, सब कुछ यही का यही धरा का धरा रह जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि जैसे फिल्म खत्म होने के बाद सिनेमा हॉल की लाइटें जल जाती हैं, तब हमें पता चलता है कि जिस विलेन से हम डर रहे थे या जिस हीरो की दौलत से हम जल रहे थे, वह तो सिर्फ एक पर्दे पर था। कबीर कह रहे हैं कि जागने के बाद ना कोई दुश्मन बचता है, ना कोई संपत्ति बचती है और ना कोई दुश्मनी बचती है, ना कोई डर बचता है, तो सिर्फ देखने वाला साक्षी। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी चिंताओं को देखिए। हम जिस चीज के लिए आज रातों की नींद खराब कर रहे हैं, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी चिंताओं को देखिए। हम जिस चीज के लिए आज रातों की नींद खराब कर रहे हैं, क्या वह 10 साल बाद मायने रखेगी? क्या वह मौत के बाद हमारे साथ आएगी? हम एक ऐसे सपने में जी रहे हैं जहां हमने खुद को कर्ता मान लिया है। आज कोशिश कीजिए थोड़ा जाग कर जीने की। जब आप यह जान लेते हैं कि यह सब एक नाटक है, एक सपना है, तो आपके भीतर तनाव खत्म हो जाता है। फिर आप न जीते जीत में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं फिर आप न जीत में बहुत ज़्यादा उछलते हैं, न हार में बहुत ज़्यादा टूटते हैं। आज अपनी आँखें खोलिए और देखिए कि जिसे आप लूटना चाहते हैं वह मिट्टी है, और जो आप खोने से डर रहे हैं वह भी मिट्टी है। असल धन तो आपके भीतर की शांति है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

एपिसोड 78। नमस्कार दोस्तों, 90.8 एफएम रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि जब आप गहरी नींद में सपना देखते हैं तो उस सपने में दो लोग होते हैं, एक तो आप जो बिस्तर पर सो रहे हैं और एक वो जो सपने के अंदर भाग रहा है, डर रहा है, हंस रहा है। सपने में आपको सामने वाला व्यक्ति खुद से अलग लगता है, वहाँ दुश्मन अलग हैं, दोस्त अलग हैं और भगवान भी अलग हैं। लेकिन जैसे ही आपकी नींद टूटती है तो दूसरा इंसान कहाँ चला जाता है, वो दुश्मन, वो दोस्त, वो भगवान सब कहाँ विलीन हो जाते हैं। कबीर साहब आज इसी जागने के विज्ञान को समझा रहे हैं। वे बता रहे हैं कि जब तक हम सो रहे हैं तब तक दुनिया दो है, और जिस दिन जाग गए उस दिन सिर्फ एक ही बचता है। आइए जानते हैं कबीर की इस जादुई दुनिया का सच। कबीर सुपने रैणी के पारस जीए में छेक, जो सोऊं तो दोई जणा ते जागूं तो एक।

श्रोताओं, कबीर साहब कह रहे हैं कबीर सुपने रैणी के, यह जीवन उस रात के सपने जैसा ही है। पारस जी में छेक, पारस यहाँ उस परम तत्व या उस अनुभव को कहा गया है जिसमें मन को बांध दिया है या एक ऐसा छेद कर दिया है जिसमें सच्चाई साफ दिखने लगी है। अब कबीर असली मर्म की बात कहते हैं, जो सोऊं तो दोई जना, जब तक मैं अज्ञान की नींद में सो रहा हूं तब तक मुझे सब अलग अलग दिखते हैं। मैं अलग हूं, तुम अलग हो, भक्त अलग हैं, भगवान अलग हैं, यह द्वैत है, यही संसार है। लेकिन जे जागूं तो एक, जैसे ही बोध हुआ, जैसे ही मैं जागा तो पता चला कि वह दूसरा तो कभी था ही नहीं। जो बाहर दिख रहा था वह भी मैं ही था, वह परमात्मा और मैं दो नहीं बल्कि एक ही चेतना के दो रूप थे। इसे ऐसे समझिए कि जैसे समुद्र की लहर, इसे ऐसे समझिए कि जैसे समंदर की लहर को लगता है कि वह लहर है और समुद्र उससे अलग है, लेकिन जिस पल वह शांत होती हैं उसे पता चलता है कि वह तो हमेशा से पानी ही थी। कबीर कह रहे हैं कि अज्ञान की नींद में हम खुद को परमात्मा से अलग मानकर भटक रहे हैं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने अलगाव को देखिए। हम क्यों दूसरों से नफरत करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वे हमसे अलग हैं। हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि परमात्मा हमसे दूर कहीं बैठा है। आज कोशिश कीजिए इस एक को पहचानने की। अगर आप जाग कर देखेंगे तो आपको हर इंसान में अपना ही अक्स दिखेगा। अब दूसरा कोई बचता ही नहीं तो फिर नफरत किससे और डर किसका? कबीर हमें उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जहां पहुंचकर मैं और तू का फर्क मिट जाता है। आज अपनी आत्मा के आईने को साफ कीजिए और देखिए कि जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं वह आपके भीतर ही आपकी सांस बनकर चल रहा है। जाग जाइए, क्योंकि जागने में ही आनंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम। एपिसोड 79। नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कई बार हमें अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सांप जैसी दिखाई देती है। हम डर जाते हैं, भागते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई हाथ में टॉर्च लेकर आता है और रोशनी उस रस्सी पर पड़ती है, हमारा डर गायब हो जाता है। हम हंसने लगते हैं कि अरे, यह तो सिर्फ एक रस्सी थी। कबीर साहब आज हमारे मन के इसी अंधेरे की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह दुनिया भी वैसी ही है, जो है नहीं वो दिख रहा है और जो है उसे हम देख नहीं पा रहे। आज का दोहा हमें सिखाएगा कि कैसे अपनी नज़र को साफ करके हम इस भ्रम के बाहर निकल सकते हैं। आइए सुनते हैं कबीर की यह वाणी। कबीर देखत देखत जग गया, देखे न सक्या कोई, कबीर देखे ता देखिए जो कबीर सा होई। कबीर देखत देखत

श्रोताओं, कबीर कहते हैं, कबीर देखत जग गया, पूरी दुनिया अपनी इन आँखों से इस संसार को देख रही हैं, लेकिन देख ही न सक्या कोई। कबीर कहते हैं कि असलियत की कोई नहीं देख पाया, सबने सिर्फ ऊपरी रंग रूप देखा, किसी ने उस भीतर छिपे सत्य को नहीं पहचाना जो इन सब चीज़ों के पीछे हैं। अगली पंक्ति में बड़ी गहरी बात कहते हैं, कबीर देखें ता देखिया, कबीर जो देख पा रहे हैं यानी वह जो परम सत्य, वह तभी दिखाई दे सकता है जो कबीर सा होई, यानी जब तक आप में कबीर जैसी सादगी, कबीर जैसा वैराग्य और कबीर जैसी निष्पक्षता नहीं आएगी, तब तक आप सत्य को नहीं देख पाएंगे। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक गंदा चश्मा, धूल भरा चश्मा पहनकर हम साफ दुनिया नहीं देख सकते। कबीर कह रहे हैं कि अगर उस मालिक को देखना है तो पहले अपनी आँखों से अहंकार और पक्षपात का चश्मा उतारना होगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी सोच पर गौर कीजिए। हम क्या देख रहे हैं? हम दूसरों में बुराइयां देख रहे हैं, हम दुनिया में कमियां देख रहे हैं, हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो हमारी आँखों के सामने पेश किया जा रहा है। आज कोशिश कीजिए भीतर झांकने की। कबीर होने का मतलब है भीतर से साफ होना। जब आप खुद को साफ कर लेते हैं तो पूरी दुनिया आपको परमात्मा का रूप दिखने लगती है। आज अपनी नज़र बदलिए ताकि नज़ारा बदल सकें। याद रखिए, जो सच है उसे आँखों से नहीं आत्मा से देखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधु 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम। एपिसोड 80। नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं। हमारे दोस्तों की लिस्ट बहुत लंबी है। सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं और बाजारों में इंसान का हुजूम उमड़ा रहता है। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। लेकिन क्या कभी आपने गहराई से सोचा है कि इस भारी भीड़ में ऐसे कितने लोग हैं जो वाकई समझदार हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के सही और गलत का अंतर समझते हैं? कबीर साहब आज इसी भीड़ का असली चेहरा हमारे सामने ला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इंसानों के जिस्म बटोर लेने से या सिर गिनने से या उनको केवल देख लेने से समाज समझदार नहीं हो जाता। आज का दोहा हमें भीड़ और विवेक के बीच का फर्क समझाएगा। आइए सुनते हैं कबीर साहब की खरी खरी वाणी। कबीर, इस संसार में घने मनीष मतिहीन, हेरत हेरत हेरी गया, कबीर भई मतिलीन।

0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार में घने मनीष मतिहीन, इस दुनिया में ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत घनी है, यानी बहुत ज़्यादा है जो मतिहीन है। मतिहीन का मतलब यहाँ सिर्फ अनपढ़ होना नहीं, बल्कि उसका अर्थ है विवेक से खाली होना, समझदारी और करुणा से दूर होना। ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे भागते हैं। अगली पंक्ति में कबीर अपनी खोज का नतीजा बताते हैं। हेरत हेरत हेरी गया, मैं पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को हेरता रहा, यानी ढूंढता रहा जो वाकई मतिमान हो, गतिमान हो, बुद्धिमान हो, जिसके पास आत्मज्ञान हो। ढूंढते ढूंढते मेरी उम्र गुजर गई और अंत में क्या हुआ। कबीर भई मतिलीन, कबीर कहते हैं कि दूसरों को ढूंढते ढूंढते मेरा अपना मन और मेरी अपनी बुद्धि उस परमात्मा के ध्यान में लीन हो गई। मुझे बाहर तो कोई बिरला ही मिला, पर भीतर जाने पर वह सच्चा ज्ञान मिला। इसे ऐसे समझिए कि जैसे हंस मोतियों की तलाश में पूरे तालाब को छान मारता है, पर वहाँ उसे सिर्फ कंकड़ पत्थर ही मिलते हैं, क्योंकि मोती हर तालाब में नहीं मिलते, उसके लिए आपको मानसरोवर में ही जाना पड़ेगा। कबीर कह रहे हैं कि दुनिया की भीड़ में समझदार इंसानों को ढूंढना वैसा ही है जैसे कि मोतियों को ढूंढना। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा इस बात पर विचार कीजिए कि हम किस भीड़ का हिस्सा हैं। क्या हम भी बिना सोचे समझे वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं? जब हम बिना विवेक के जीते हैं तो हम सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाते हैं। आज कोशिश कीजिए भीड़ से अलग होकर अपनी मति, अपनी बुद्धि को जगाने की। कबीर होने का मतलब यह भी है कि आप दुनिया की देखा देखी गलत रास्ते पर ना चलें। अपनी समझ को साफ रखिए, नेक काम कीजिए, और अगर बाहर कोई समझदार ना मिले तो खुद के भीतर झांक कर देखिए। वहाँ जो समझ पैदा होगी वह आपको कभी भटकने नहीं देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: ग्रामगीता चिंतनाच्या 12व्या भागात घेऊया। या भागाची सुरुवात करत असताना मागील भागाचं विशेष चिंतन याप्रमाणे: ईश्वरे जग केले निर्माण, त्याचे कार्य अजूनही अपूर्ण, ते आपुल्यापरी कराया पूर्ण, सद्बुद्धी दिली मानवा। वंदने राष्ट्रसंतांच्या सहवासात संसर्गाचा वाईट प्रभाव होऊ नये यासाठी पुढे ते लिहितात: एका पासुनी अनेक भावे, अनेकाशी एकत्वी आणावे, हा आपला मूळ संकल्प देवे, चित्ती घातला सर्वांच्या, अनेक ईशना प्रेरणा, त्या कारण होती आत्मविकसना, पुत्र पौत्रादी रूपे नाना, मानव आपना प्रगटवी, कोणी शिष्य शाखा वाढवी, कोणी ग्रंथादिक उपजवी, जगी आपली परंपरा चालावी, ऐशी इच्छा स्वाभाविक, जगावरची मानव जगला, समुदायातची उन्नत झाला, तो समुदायाचे कार्य विसरला, तरी ते उचित कैसे, पिंड ब्रह्मांड हे निगडित, संस्कारही जगाशी संबंधित, आत्मज्ञाने राहू जीव अलिप्त, परी उपेक्षान व्हावी जगाची, सत्य शिव सुखी सुंदर, ऐसा भावा हा संसार, देवे सोपविले कर्तव्य थोर, मानवा प्रती, मानवे आपला उद्धार करावा, तैसाची समाज सुधारावा, यासाठी दिला धर्म आघवा, नेमुनी सकळा, यासाठीच झाले अवतार, यासाठीच संत भक्तांचा व्यवहार, सुखी करीन अवघाची संसार, ब्रीद तयाचे। याप्रमाणे या ग्रामगीतेच्या 12व्या भागामध्ये श्रोते म्हणतात, हे ठीक आहे महाराज, आमच्या एकट्याने काय होईल, त्यासाठी आम्ही काय करावं, आमचे म्हणणे गावातील लोक ऐकतील काय, यासाठी काय प्रक्रिया आहे ते सांगा। वंदने महाराज उत्तर देतात, आपण पुसली या प्रश्नाचे, मी उत्तर देईन साचे परी लक्षी ठेवनी हृदयाचे आचरा तैसे मी सांगेन म्हणून नव्हे संती हेची कथिले बरवे माझा विश्वास जेथे धावे तेची सांगेन तुम्हाला सर्वाधी एक निश्चय लोक अस्ति अनुकरण प्रिय विशेष दिशेती घेती सोय न सांगताही मुख्य कार्यकर्त्याची राहणी निरीक्षोनी बघती कोणी लागती त्याच्याच मागे धावोनी वत्स जैसे म्हणोनी कार्यकर्त्यात असावे आकर्षण सेवा चारित्र्याचे ओज पूर्ण सुधारणोही त्या वाचून गावाचा कोण्या या मार्गानेची जनजागृती हेची सूत्र घ्यावे हाती आपण वागावे.

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। लहलाती पीली सरसों की दमक, गिद्दा की ताल और प्रेम के प्रतीक सोनी महिवाल का राज्य पंजाब, ऊंचे पूरे कद काठी के मेहनतकश नौजवान, सिर पर साफा और कुड़ियों की धानी चुनर, साथ ही सरसों का साग और मक्की की रोटी का लाजवाब स्वाद, कुछ ऐसा ही दृश्य उभरता है मस्तिष्क में जब भी बात आती है पंजाब की। देश की स्वतंत्रता में भी पंजाब की अपनी अहम भूमिका थी। कई ऐसे वीर क्रांतिकारी हुए जो पंजाबी तो थे ही, साथ ही निडर और साहसी भी थे, जिनका वचन उनकी आन बान और शान था। हरिकिशन तलवार के पिता गुरुदास माल तलवार थे। दोनों ही पिता पुत्र की शहादत स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शायद एकमात्र उदाहरणों में से एक है। हरिकिशन का जन्म सीमांत प्रांत के मर्दान जिले के गल्लाढर स्थान पर हुआ था। पिता गुरुदास मल महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी के प्रशंसक और पाठक थे। जब भारत की आजादी का बिगुल बजा तो गुरुदास मल ने अपने बेटों को आंदोलनकारी बनाने का संकल्प तो ले लिया, साथ ही स्वयं प्रशिक्षित भी किया। सन 1930 में हरिकिशन और छोटे भाई भगत राम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भारत से बाहर जाने में पूर्ण रूप से सहायता की थी, जिसकी सजा के तौर में दोनों भाइयों को पेशावर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था। राजनैतिक गतिविधियों और आंदोलनकारियों से जेल ठसाठस भरी थी। अंग्रेज इस मुसीबत से निजात पाना चाहते थे, जिसके लिए उपाय ये निकाला कि अंग्रेजी भाषा में लिखे एक फॉर्म में ये कहकर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे कि ये तुम्हारी रिहाई के ऑर्डर हैं, जबकि असलियत थी कि वो एक प्रतिज्ञा पत्र था, जिसमें हस्ताक्षर करने का मतलब ये है कि वो भविष्य में कभी भी किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होगा, अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी अपराध नहीं करेगा। अंग्रेजी भाषा में लिखे जाने के कारण बात उस समय तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब हरिकिशन घर पहुंचे तो पिता ने बहुत गुस्से में कहा कि उस फॉर्म पर हस्ताक्षर करके परिवार की मर्यादा को भंग कर दिया है। बस फिर क्या था, हरिकिशन तुरंत ही कृत संकल्पित हो गए। उन्होंने ठान लिया कि ब्रिटिश सरकार से वो अवश्य ही बदला लेकर रहेंगे, चाहे उन्हें जो भी करना पड़े।

बचपन से पिता ने हरिकिशन के मन में देशभक्ति कूट कूट कर भर दी थी, इसीलिए बालक होते हुए भी वो क्रांतिकारियों के बहुत बड़े प्रशंसक बन गए थे। जब काकोरी कांड का मुकदमा चला तो अखबारों में छपे क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के बयानों को वो बड़े ध्यान से कई कई बार पढ़ा करते थे। मन ही मन सरदार भगत सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था उन्होंने और चल पड़े थे शहादत की राह पर। हरिकिशन के मन में ये बात घर कर गई थी कि अहिंसात्मक आंदोलन से देश को स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, तो उन्होंने क्रांति और विद्रोह का रास्ता चुन लिया। ब्रिटिश सरकार को सबक सिखाने के मकसद से योजना बनाई गई कि पंजाब के गवर्नर से ही हिसाब चुकता किया जाएगा और इसके लिए एक तेज शूटर की जरूरत थी। दैनिक प्रताप अखबार के क्रांतिकारी संपादक चमनलाल कपूर जी हरिकिशन के संकल्प से वाकिफ थे। हरिकिशन की तो दिल की मुराद पूरी हो गई। स्वयं उनके पिता गुरदास माल ने अपने पुत्र को खुश होकर नजदीक से निशानेबाजी का विधिवत प्रशिक्षण दिला दिया था। योजना के अनुसार पंजाब विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 23 दिसंबर सन 1930 को संपन्न होना था। समारोह की अध्यक्षता के लिए पंजाब के गवर्नर जेओफ्रे मॉन्टमोरेसी करने वाले थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उद्बोधन था। योजना के अनुसार 20 दिसंबर सन 1930 को चमनलाल कपूर जी हरिकिशन के साथ लाहौर पहुंच गए। खास बात ये थी कि इस बात का ध्यान रखना था कि फायर के बाद भागना नहीं है ताकि निर्दोष लोगों को नुकसान ना हो। 23 दिसंबर सन 1930 को हरिकिशन जी सूट बूट पहनकर एक पुस्तक को बीच में से काटकर उन्होंने रिवॉल्वर को उसमें छुपा दिया और पहले ही वो सीनेट हॉल में पहुंच गए अपनी क्रांतिकारी योजना को अंजाम देने के लिए।

जैसे ही दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ और विद्वान सभा भवन से जाने लगे, एक कुर्सी पर खड़े होकर गवर्नर पर हरिकिशन ने फायर कर दिया। निशाना चूक गया। गोली गवर्नर की बांह छीलती निकल गई। दूसरी गोली पीठ को छूकर निकल गई, लेकिन तीसरी गोली चलती इससे पहले ही डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नर के सामने आ गए। हरिकिशन को गिरफ्तार कर लिया गया और सलाखों में कैद कर दिया गया। जेल में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। कड़ाके की सर्दी की रातों में भी उनको निर्वस्त्र करके बर्फ की शिलाओं के बीच दबाकर रखते थे। उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। इतनी नरकीय यातनाओं सहने के बाद भी हरिकिशन जैसे वीर क्रांतिकारी ने अपने नाम और पते के अलावा कुछ नहीं बताया। ब्रिटिश सरकार के इतने जुल्मों को उन्होंने धैर्यपूर्वक सहन किया और वो सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद के जय घोष करते रहे। सरकार हैरान थी कि ना जाने हरिकिशन किस मिट्टी का बना है, इतने वार अकेले सहन कर रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। वो टूटते भी कैसे? भारत माता के वीर सपूतों को अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता तो हर कीमत पर प्राप्त जो करनी थी। नामी वकील मोहम्मद आसिफ अली ने हरिकिशन जी को बचाने की बहुत कोशिश की, पैरवी की, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। हरिकिशन ने अपना बयान उर्दू में लिखकर दिया था कि ब्रिटिश शासन अत्याचारी है, उनकी सशस्त्र सेना ने निहत्ते पठानों पर 30 अप्रैल सन 1930 को गोली चलाकर अनेक पुरुषों, महिलाओं और मासूम बच्चों को मार डाला था। मैं जानता हूं कि मेरा भविष्य क्या है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मेरे बलिदान से यदि स्वतंत्रता थोड़ी और नजदीक आए तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं हजार बार बलिदान होने के लिए तैयार हूँ। चाहता हूँ कि मैं बार बार भारत में ही जन्म लूँ और हर बार अपने देश के लिए बलिदान हो जाऊँ। मेरे मरने के बाद भी हजारों हरिकिशन पैदा होंगे। मैं चाहता हूँ कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर अपने अत्याचार बंद करे, हमारा देश छोड़ दे। उन्होंने अपना बयान इनकलाब जिंदाबाद के साथ ही समाप्त कर दिया। जिस जेल में हरिकिशन थे उसी जेल में सरदार भगत सिंह जी को भी रखा गया था। अपने क्रांतिकारी गुरु भगत सिंह से मिलने से मना करने पर हरिकिशन ने अनशन कर दिया। बाद में 9 दिनों के बाद भगत सिंह जी के हाथों दूध पिलाकर ही हरिकिशन ने अपना अनशन समाप्त किया। 9 जून सन 1931 को लाहौर की मियांवाली जेल से सुबह 6 बजे हरिकिशन जी ने फांसी के फंदे को इनकलाब जिंदाबाद कहते कहते हंसते हंसते चूम लिया। हरिकिशन के पिता को भी हिरासत में लेकर कई यातनाएं दी गईं और 25 दिन बाद यानी 4 जुलाई सन 1931 को उनको भी फांसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारी पिता पुत्र की ऐसी गौरवशाली साहसिक शहादत को हम शत शत नमन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री पंकज राग ने, समन्वय किया संजय यादव ने और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। जय हिंद।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। लहलाती पीली सरसों की दमक, गिद्दा की ताल और प्रेम के प्रतीक सोनी महिवाल का राज्य पंजाब, ऊंचे पूरे कद काठी के मेहनतकश नौजवान, सिर पर साफा और कुड़ियों की धानी चुनर, साथ ही सरसों का साग और मक्की की रोटी का लाजवाब स्वाद, कुछ ऐसा ही दृश्य उभरता है मस्तिष्क में जब भी बात आती है पंजाब की। देश की स्वतंत्रता में भी पंजाब की अपनी अहम भूमिका थी। कई ऐसे वीर क्रांतिकारी हुए जो पंजाबी तो थे ही, साथ ही निडर और साहसी भी थे, जिनका वचन उनकी आन बान और शान था। हरिकिशन तलवार के पिता गुरुदास माल तलवार थे। दोनों ही पिता पुत्र की शहादत स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शायद एकमात्र उदाहरणों में से एक है। हरिकिशन का जन्म सीमांत प्रांत के मरदान जिले के गल्लाढर स्थान पर हुआ था। पिता गुरुदास मल महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी के प्रशंसक और पाठक थे। जब भारत की आजादी का बिगुल बजा तो गुरुदास मल ने अपने बेटों को आंदोलनकारी बनाने का संकल्प तो ले लिया, साथ ही स्वयं प्रशिक्षित भी किया। सन 1930 में हरिकिशन और छोटे भाई भगत राम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भारत से बाहर जाने में पूर्ण रूप से सहायता की थी, जिसकी सजा के तौर में दोनों भाइयों को पेशावर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था। राजनैतिक गतिविधियों और आंदोलनकारियों से जेल ठसाठस भरी थी। अंग्रेज इस मुसीबत से निजात पाना चाहते थे, जिसके लिए उपाय ये निकाला कि अंग्रेजी भाषा में लिखे एक फॉर्म में ये कहकर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे कि ये तुम्हारी रिहाई के ऑर्डर हैं, जबकि असलियत थी कि वो एक प्रतिज्ञा पत्र था, जिसमें हस्ताक्षर करने का मतलब ये है कि वो भविष्य में कभी भी किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होगा, अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी अपराध नहीं करेगा। अंग्रेजी भाषा में लिखे जाने के कारण बात उस समय तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब हरिकिशन घर पहुंचे तो पिता ने बहुत गुस्से में कहा कि उस फॉर्म पर हस्ताक्षर करके परिवार की मर्यादा को भंग कर दिया है। बस फिर क्या था, हरिकिशन तुरंत ही कृत संकल्पित हो गए। उन्होंने ठान लिया कि ब्रिटिश सरकार से वो अवश्य ही बदला लेकर रहेंगे, चाहे उन्हें जो भी करना पड़े।

बचपन से पिता ने हरिकिशन के मन में देशभक्ति कूट कूट कर भर दी थी, इसलिए बालक होते हुए भी वो क्रांतिकारियों के बहुत बड़े प्रशंसक बन गए थे। जब काकोरी कांड का मुकदमा चला तो अखबारों में छपे क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के बयानों को वो बड़े ध्यान से कई कई बार पढ़ा करते थे। मन ही मन सरदार भगत सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था उन्होंने और चल पड़े थे शहादत की राह पर। हरिकिशन के मन में ये बात घर कर गई थी कि अहिंसात्मक आंदोलन से देश को स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, तो उन्होंने क्रांति और विद्रोह का रास्ता चुन लिया। ब्रिटिश सरकार को सबक सिखाने के मकसद से योजना बनाई गई कि पंजाब के गवर्नर से ही हिसाब चुकता किया जाएगा और इसके लिए एक तेज शूटर की जरूरत थी। दैनिक प्रताप अखबार के क्रांतिकारी संपादक चमनलाल कपूर जी हरिकिशन के संकल्प से वाकिफ थे। हरिकिशन की तो दिल की मुराद पूरी हो गई। स्वयं उनके पिता गुरदास माल ने अपने पुत्र को खुश होकर नजदीक से निशानेबाजी का विधिवत प्रशिक्षण दिला दिया था। योजना के अनुसार पंजाब विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 23 दिसंबर 1930 को संपन्न होना था। समारोह की अध्यक्षता के लिए पंजाब के गवर्नर जेओफ्रे मॉन्टमोरेसी करने वाले थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उद्बोधन था। योजना के अनुसार 20 दिसंबर सन 1930 को चमनलाल कपूर जी हरिकिशन के साथ लाहौर पहुंच गए। खास बात ये थी कि इस बात का ध्यान रखना था कि फायर के बाद भागना नहीं है ताकि निर्दोष लोगों को नुकसान ना हो। 23 दिसंबर सन 1930 को हरिकिशन जी सूट बूट पहनकर एक पुस्तक को बीच में से काटकर उन्होंने रिवॉल्वर को उसमें छुपा दिया और पहले ही वो सीनेट हॉल में पहुंच गए अपनी क्रांतिकारी योजना को अंजाम देने के लिए।

जैसे ही दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ और विद्वान सभा भवन से जाने लगे, एक कुर्सी पर खड़े होकर गवर्नर पर हरिकिशन ने फायर कर दिया। निशाना चूक गया। गोली गवर्नर की बांह छीलती निकल गई। दूसरी गोली पीठ को छूकर निकल गई, लेकिन तीसरी गोली चलती इससे पहले ही डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नर के सामने आ गए। हरिकिशन को गिरफ्तार कर लिया गया और सलाखों में कैद कर दिया गया। जेल में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। कड़ाके की सर्दी की रातों में भी उनको निर्वस्त्र करके बर्फ की शिलाओं के बीच दबाकर रखते थे। उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। इतनी नरकीय यातनाओं सहने के बाद भी हरिकिशन जैसे वीर क्रांतिकारी ने अपने नाम और पते के अलावा कुछ नहीं बताया। ब्रिटिश सरकार के इतने जुल्मों को उन्होंने धैर्यपूर्वक सहन किया और वो सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद के जय घोष करते रहे। सरकार हैरान थी कि ना जाने हरिकिशन किस मिट्टी का बना है, इतने वार अकेले सहन कर रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। वो टूटते भी कैसे? भारत माता के वीर सपूतों को अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता तो हर कीमत पर प्राप्त जो करनी थी। नामी वकील मोहम्मद आसिफ अली ने हरिकिशन जी को बचाने की बहुत कोशिश की, पैरवी की, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। हरिकिशन ने अपना बयान उर्दू में लिखकर दिया था कि ब्रिटिश शासन अत्याचारी है, उनकी सशस्त्र सेना ने निहत्ते पठानों पर 30 अप्रैल सन 1930 को गोली चलाकर अनेक पुरुषों, महिलाओं और मासूम बच्चों को मार डाला था। मैं जानता हूँ कि मेरा भविष्य क्या है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मेरे बलिदान से यदि स्वतंत्रता थोड़ी और नजदीक आए तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं हजार बार बलिदान होने के लिए तैयार हूँ। चाहता हूँ कि मैं बार बार भारत में ही जन्म लूँ और हर बार अपने देश के लिए बलिदान हो जाऊँ। मेरे मरने के बाद भी हजारों हरिकिशन पैदा होंगे। मैं चाहता हूँ कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर अपने अत्याचार बंद करे, हमारा देश छोड़ दे। उन्होंने अपना बयान इनकलाब जिंदाबाद के साथ ही समाप्त कर दिया। जिस जेल में हरिकिशन थे उसी जेल में सरदार भगत सिंह जी को भी रखा गया था। अपने क्रांतिकारी गुरु भगत सिंह से मिलने से मना करने पर हरिकिशन ने अनशन कर दिया। बाद में 9 दिनों के बाद भगत सिंह जी के हाथों दूध पिलाकर ही हरिकिशन ने अपना अनशन समाप्त किया। 9 जून सन 1931 को लाहौर की मियांवाली जेल से सुबह 6 बजे हरिकिशन जी ने फांसी के फंदे को इनकलाब जिंदाबाद कहते कहते हंसते हंसते चूम लिया। हरिकिशन के पिता को भी हिरासत में लेकर कई यातनाएं दी गईं और 25 दिन बाद यानी 4 जुलाई सन 1931 को उनको भी फांसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारी पिता पुत्र की ऐसी गौरवशाली साहसिक शहादत को हम शत शत नमन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री पंकज राग ने, समन्वय किया संजय यादव ने और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। जय हिंद।

0: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM कच्चा घड़ा उठता है। यह जो हमारा जीवन है, नींद में कबीर देख कबीर इस संसार में घने मनीष बुद्धि को जगाने की।
1: आप सुन रहे हैं
2: ग्रामगीता चिंतनाचा।
3: नमस्कार श्रोतहू, प्रसारणात यानंतर आपण ऐकणार आहोत कार्यक्रम वतन का राग। स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाळ।

0: नमस्कार,
1: श्रुतु प्रसारणात यानंतरापण आम्ही हगे।
2: सन 1930 में सीमा
3: जब भी बात आती
2: है, लहलाती पीली सरसों की दमक, गिद्दा की

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। लहलहाती पीली सरसों की दमक, गिद्दा की ताल और प्रेम के प्रतीक सोनी महिवाल का राज्य पंजाब, ऊंचे पूरे कद काठी के मेहनतकश नौजवान, सिर पर साफा और कुड़ियों की धानी चुनर, साथ ही सरसों का साग और मक्की की रोटी का लाजवाब स्वाद, कुछ ऐसा ही दृश्य उभरता है मस्तिष्क में जब भी बात आती है पंजाब की। देश की स्वतंत्रता में भी पंजाब की अपनी अहम भूमिका थी। कई ऐसे वीर क्रांतिकारी हुए जो पंजाबी तो थे ही, साथ ही निडर और साहसी भी थे, जिनका वचन उनकी आन बान और शान था। हरिकिशन तलवार के पिता गुरुदास माल तलवार थे। दोनों ही पिता पुत्र की शहादत स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शायद एकमात्र उदाहरणों में से एक है। हरिकिशन का जन्म सीमांत प्रांत के मर्दान जिले के गल्लाढर स्थान पर हुआ था। पिता गुरुदास मल महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी के प्रशंसक और पाठक थे। जब भारत की आजादी का बिगुल बजा तो गुरुदास मल ने अपने बेटों को आंदोलनकारी बनाने का संकल्प तो ले लिया, साथ ही स्वयं प्रशिक्षित भी किया। सन 1930 में हरिकिशन और छोटे भाई भगत राम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भारत से बाहर जाने में पूर्ण रूप से सहायता की थी, जिसकी सजा के तौर में दोनों भाइयों को पेशावर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था। राजनैतिक गतिविधियों और आंदोलनकारियों से जेल ठसाठस भरी थी। अंग्रेज इस मुसीबत से निजात पाना चाहते थे, जिसके लिए उपाय ये निकाला कि अंग्रेजी भाषा में लिखे एक फॉर्म में ये कहकर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे कि ये तुम्हारी रिहाई के ऑर्डर हैं, जबकि असलियत थी कि वो एक प्रतिज्ञा पत्र था, जिसमें हस्ताक्षर करने का मतलब ये है कि वो भविष्य में कभी भी किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होगा, अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी अपराध नहीं करेगा। अंग्रेजी भाषा में लिखे जाने के कारण बात उस समय तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब हरिकिशन घर पहुंचे तो पिता ने बहुत गुस्से में कहा कि उस फॉर्म पर हस्ताक्षर करके परिवार की मर्यादा को भंग कर दिया है। बस फिर क्या था, हरिकिशन तुरंत ही कृत संकल्पित हो गए। उन्होंने ठान लिया कि ब्रिटिश सरकार से वो अवश्य ही बदला लेकर रहेंगे, चाहे उन्हें जो भी करना पड़े।

बचपन से पिता ने हरिकिशन के मन में देशभक्ति कूट कूट कर भर दी थी, इसलिए बालक होते हुए भी वो क्रांतिकारियों के बहुत बड़े प्रशंसक बन गए थे। जब काकोरी कांड का मुकदमा चला तो अखबारों में छपे क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के बयानों को वो बड़े ध्यान से कई कई बार पढ़ा करते थे। मन ही मन सरदार भगत सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था उन्होंने और चल पड़े थे शहादत की राह पर। हरिकिशन के मन में ये बात घर कर गई थी कि अहिंसात्मक आंदोलन से देश को स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, तो उन्होंने क्रांति और विद्रोह का रास्ता चुन लिया। ब्रिटिश सरकार को सबक सिखाने के मकसद से योजना बनाई गई कि पंजाब के गवर्नर से ही हिसाब चुकता किया जाएगा और इसके लिए एक तेज शूटर की जरूरत थी। दैनिक प्रताप अखबार के क्रांतिकारी संपादक चमनलाल कपूर जी हरिकिशन के संकल्प से वाकिफ थे। हरिकिशन की तो दिल की मुराद पूरी हो गई। स्वयं उनके पिता गुरदास माल ने अपने पुत्र को खुश होकर नजदीक से निशानेबाजी का विधिवत प्रशिक्षण दिला दिया था। योजना के अनुसार पंजाब विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 23 दिसंबर सन 1930 को संपन्न होना था। समारोह की अध्यक्षता के लिए पंजाब के गवर्नर जेओफ्रे मॉन्टमोरेसी करने वाले थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उद्बोधन था। योजना के अनुसार 20 दिसंबर सन 1930 को चमनलाल कपूर जी हरिकिशन के साथ लाहौर पहुंच गए। खास बात ये थी कि इस बात का ध्यान रखना था कि फायर के बाद भागना नहीं है ताकि निर्दोष लोगों को नुकसान ना हो। 23 दिसंबर सन 1930 को हरिकिशन जी सूट बूट पहनकर एक पुस्तक को बीच में से काटकर उन्होंने रिवॉल्वर को उसमें छुपा दिया और पहले ही वो सीनेट हॉल में पहुंच गए अपनी क्रांतिकारी योजना को अंजाम देने के लिए।

जैसे ही दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ और विद्वान सभा भवन से जाने लगे, एक कुर्सी पर खड़े होकर गवर्नर पर हरि किशन ने फायर कर दिया। निशाना चूक गया। गोली गवर्नर की बांह छीलती निकल गई। दूसरी गोली पीठ को छूकर निकल गई, लेकिन तीसरी गोली चलती इससे पहले ही डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नर के सामने आ गए। हरि किशन को गिरफ्तार कर लिया गया और सलाखों में कैद कर दिया गया। जेल में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। कड़ाके की सर्दी की रातों में भी उनको निर्वस्त्र करके बर्फ की शिलाओं के बीच दबाकर रखते थे। उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। इतनी नरकीय यातनाओं सहने के बाद भी हरि किशन जैसे वीर क्रांतिकारी ने अपने नाम और पते के अलावा कुछ नहीं बताया। ब्रिटिश सरकार के इतने जुल्मों को उन्होंने धैर्यपूर्वक सहन किया और वो सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद के जय घोष करते रहे। सरकार हैरान थी कि ना जाने हरि किशन किस मिट्टी का बना है, इतने वार अकेले सहन कर रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। वो टूटते भी कैसे? भारत माता के वीर सपूतों को अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता तो हर कीमत पर प्राप्त जो करनी थी। नामी वकील मोहम्मद आसिफ अली ने हरि किशन जी को बचाने की बहुत कोशिश की, पैरवी की, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। हरि किशन ने अपना बयान उर्दू में लिखकर दिया था कि ब्रिटिश शासन अत्याचारी है, उनकी सशस्त्र सेना ने निहत्ते पठानों पर 30 अप्रैल सन 1930 को गोली चलाकर अनेक पुरुषों, महिलाओं और मासूम बच्चों को मार डाला था। मैं जानता हूं कि मेरा भविष्य क्या है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मेरे बलिदान से यदि स्वतंत्रता थोड़ी और नजदीक आए तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं हजार बार बलिदान होने के लिए तैयार हूँ। चाहता हूँ कि मैं बार बार भारत में ही जन्म लूँ और हर बार अपने देश के लिए बलिदान हो जाऊँ। मेरे मरने के बाद भी हजारों हरि किशन पैदा होंगे। मैं चाहता हूँ कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर अपने अत्याचार बंद करे, हमारा देश छोड़ दे। उन्होंने अपना बयान इनकलाब जिंदाबाद के साथ ही समाप्त कर दिया। जिस जेल में हरि किशन थे उसी जेल में सरदार भगत सिंह जी को भी रखा गया था। अपने क्रांतिकारी गुरु भगत सिंह से मिलने से मना करने पर हरि किशन ने अनशन कर दिया। बाद में 9 दिनों के बाद भगत सिंह जी के हाथों दूध पिलाकर ही हरि किशन ने अपना अनशन समाप्त किया। 9 जून सन 1931 को लाहौर की मियांवाली जेल से सुबह 6 बजे हरि किशन जी ने फांसी के फंदे को इनकलाब जिंदाबाद कहते कहते हंसते हंसते चूम लिया। हरि किशन के पिता को भी हिरासत में लेकर कई यातनाएं दी गईं और 25 दिन बाद यानी 4 जुलाई सन 1931 को उनको भी फांसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारी पिता पुत्र की ऐसी गौरवशाली साहसिक शहादत को हम शत शत नमन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री पंकज राग ने, समन्वय किया संजय यादव ने और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। जय हिंद।